0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: इट्स एक्सक्लूसिव वाइट गाय इन द बिल्डिंग
3: बैक इन द वाइट गाय
2: लेट्स गो
4: smoking
2: drinking
4: aloud shouting
2: jumping
4: aloud
2: kissing hugging smooching aloud
4: don't stop
2: it is aloud let's go maka make it Betty Jane huh bini di worry di wo mewa hanuti wea
3: mewa hanutengo
2: mewa hanuti wea ekate feel like home maka make it Betty Jane huh bini di worry di wo mewa hanuti wea
3: mewa hanutengo

0: और मैं पाचू
1: इटीयूनो और रेडियो
2: मान रेको दे मैं बिरनी रेको नमा बीच मैं पुआ डुंग टू अल्बोन मोन किट गेनो बेरो टीकेरे पिकारे दुजो रेको दुवर किते

0: मार मैं पाचो
1: इटी विनो और रेडियो
2: नाकासेर सब काउंटी लेबरलाइन पारिश पीओ बॉक्स 626 गुलू युगांडा नियंत्रण बीट मिड्रेमा बेरो मारा लिबर